गलत संगत आपके वर्षों के संस्कार बिगाड़ सकती है और एक अच्छी संगति आपका पूरा जीवन संवार सकती है। आप ऐसे लोगों की संगति ना करें जो सदैव नकारात्मकता की बातें करते हों, बल्कि ऐसे लोगों की संगति करें जो सदैव उत्साहजनक बातें करते हों। इससे आपका दृष्टिकोण भी सदैव सकारात्मक और उत्साहजनक होगा।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

अभी आप तापसी नागराज की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे और अब सुनिए जिया लाल व साथियों की आवाज़ों में ये भजन।

0: अभी आप ज्योतिका राय की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें जैव उर्वरकों के संदर्भ में। भारतीय कृषि में गोबर की खाद, कंपोस्ट व हरी खाद पोषक तत्व के परंपरागत स्रोत रहे हैं। पिछले 3 दशक से कृषि में काफ़ी उन्नति हुई है। वैज्ञानिक परीक्षणों से कृषि में उपज बढ़ी है और साथ ही साथ फसलों की आवश्यकता के अनुसार हम उर्वरकों का प्रयोग भी करने लगे हैं। इन सब के बावजूद लगातार उर्वरकों के प्रयोग से जमीन की उपजाऊपन की शक्ति नष्ट हो रही है। इसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कि चिंता का विषय है। पोषक तत्वों का अधिक दोहन एवं समय पर उसकी भरपाई ना करना और कम भरपाई करना, इससे भी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसका हनन हो रहा है। किसान भाइयों, ऐसे में अन्य पोषक तत्वों की तलाश एवं उसके उपयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। सौभाग्य से प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करने, फास्फेट एवं पोटाश के अघुलनशील अवयव को घुलनशील अवस्था में बदलने एवं पौधों के अवशेष को सड़ा गलाकर कार्बनिक पदार्थों में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी तत्व बनाने में सक्षम हैं। जब इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जमीन में कम हो जाती है तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम साधनों की मदद ली जाती है। इन्हीं को हम जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर्थिक दृष्टि से किसानों को काफ़ी सस्ते मिलते हैं। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नील हरित शैवाल एवं अजोला वायुमंडलीय

0: नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करने में सक्षम हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक फसल या फसल समूह के लिए अलग किस्म का राइजोबियम प्रयोग में लाया जाता है। राइजोबियम पौधों के साथ सहजीवन व्यतीत करता है, यानी पौधों की जड़ों पर जो ग्रंथियां बनती हैं उसमें राइजोबियम रहता है और इसके बदले में राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करता है। एजिटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन जमीन में स्थिर करते हैं। ये जमीन में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं। नील हरित शैवाल जलीय पौधा होने के कारण इसका प्रयोग सिर्फ धान की खेती तक सीमित रहता है और इसके उपयोग से खेत को 30 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। किसान भाइयों, जमीन में फास्फोरस जो होता है वो अक्सर अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। जमीन के अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाने में सूडोमोनास व बैसिलस नामक बैक्टीरिया तथा पेनिसिलियम व एस्परजिलस नामक फंगस यानी फफूंद मुख्य रूप से काम करते हैं। ये अघुलनशील ट्राइकैल्शियम व रॉक फास्फेट पर निर्वाह करते हुए 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस जमीन को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावे वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा नामक एक फफूंद होता है जो पौधों की जड़ों के साथ उप सहजीवन व्यतीत करते हुए अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से फसल के अवशेषों को सड़ाकर फसल के अंदर के सेलुलोज को सड़ाने में ट्राइकोडर्मा सेल्यूमोनास आदि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वे काफ़ी सक्षम हैं। जैव उर्वरक का उपयोग जमीन, बीज एवं पौधों को उपचारित करके किया जा सकता है। यदि बीज को उपचारित करना है तो 500 ग्राम यूरिया चीनी के 400 से 500 मिलीलीटर में घोलकर उसमें 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर मिलाकर 10 से 12 किलोग्राम बीज का उपचार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि उपचारित बीज को धूप में ना सुखाएं। मृदा में जैव उर्वरक मिलाने के लिए 3 से 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को 90 से 120 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में मिलाकर खेत की अंतिम जुताई के समय खेत की मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का प्रयोग आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम

का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका आज दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5:00 श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। कल मंगलवार 18 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल मंगलवार 18 तारीख को जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल मंगलवार 18 तारीख को सवेरे 10:00 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9:00 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। निनकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर नालंदा जलयान कल मंगलवार 18 तारीख को सवेरे 9:00 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान बृहस्पतिवार 20 तारीख को सवेरे 8:00 कैमल बे से निनकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल मंगलवार 18 तारीख को प्रातः 6:00 श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12:00 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल 18 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 18 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल मंगलवार 18 तारीख को दिन के 11:00 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 1:00 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल मंगलवार 18 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2:00 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल 18 तारीख को दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया है जुदाई शीर्षक के चुनिंदा गीतों से। श्रोताओं, जुदाई सिर्फ दूरियों का नाम नहीं, ये उन यादों का नाम है जो हर पल किसी की कमी महसूस कराती है। जुदाई हमें सिखाती है कि किसी की मौजूदगी की कीमत उसके दूर जाने के बाद ही समझ आती है।

श्रोताओं, जुदाई की घड़ी भले ही छोटी हो मगर उसकी यादें बहुत लंबी होती है। जुदाई एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान अकेला चलता है और यादें उसके साथ चलती हैं।

श्रोताओं, जुदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को दिल से चाहा हो। साथी की जुदाई के एहसास से ही दिल का चैन और करार कहीं खो जाता है।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी सोनिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 333वीं कड़ी।

अपनी चतुरंगिणी सेना की अगणित टुकड़ियों के साथ रावण युद्ध भूमि में उतरा है। तरह तरह के रथ तथा वाहनों पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही हैं। ऐसी विशाल सेना के पदचाप से इतनी धूल उड़ी है कि सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया है। पवन जैसे ठहर गया है। पृथ्वी आतंकित है। दिशाओं के प्रहरी हाथी डगमगाने लगे हैं। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं। रावण रथ पर सवार है, जबकि सामने अपने भीमकाय वानर और रीछ योद्धाओं के साथ श्रीराम पैदल। दोनों पक्षों के सेनानी एक दूसरे को ललकार रहे हैं। विभीषण के मन में शंका घिर आती है कि रथ पर आरूढ़ रावण को श्रीराम किस प्रकार पराजित कर सकेंगे। श्री राम मुस्कुराते हुए उनकी शंका का समाधान करते हैं। युद्ध में विजय सदा धर्मरथ की होती है।

शौर्य और धैर्य उसके पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी पताकाएं, बल विवेक इंद्रिय शमन और परोपकार उस रथ के अश्व होते हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से जुते होते हैं।

0: अभी आप रामचरित मानस गान की 333वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और सुरेश वाटकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए स्वतंत्रता के 80 वर्ष विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ता देश पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: दो दिन पहले देश ने अपनी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मनाई। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लाल किले का वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत गाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के स्वर से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और पूरा देश नए संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान सपूतों को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान ने देश को आजादी दिलाई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब वह अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ता है। इसलिए अब भारत छोटे सपनों का नहीं बल्कि बड़े लक्ष्यों का देश बनेगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने पिछले वर्षों में गरीबी से बाहर आए करोड़ों लोगों, तेज होते विकास और बदलती अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने नई रफ्तार पकड़ी है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री के संबोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, सेमीकंडक्टर तकनीक और बुनियादी ढांचे से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए शुरू किए गए संयंत्रों, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और समुद्र में तेल गैस के संसाधनों की तलाश के

0: प्रयासों का भी उल्लेख किया। भारत की ऊर्जा जरूरतों के संदर्भ में उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली रेल, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की कमी से ज्यादा सोच की सीमाएं बाधा बनती हैं। कृषि और किसानों को भी विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया गया। प्रधानमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, रसायन मुक्त खेती और भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर बल दिया। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था को विकास की नई धारा के रूप में सामने रखा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, 6G, खेल, गेमिंग, VFX, स्वास्थ्य और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने की आवश्यकता है। खेलों में जो खेले वो खिले के मंत्र के साथ भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक आयोजन की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प भी सामने आया। महिलाओं के सामर्थ्य को राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां आज चिप निर्माण से लेकर हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। 3 करोड़ महिलाओं के लखपति दीदी बनने का उल्लेख करते हुए उन्होंने 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने देशवासियों से महिलाओं के सामर्थ्य का सम्मान करने और महिला आरक्षण से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह के अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बलिदान देने वाले जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि हिंसक नक्सलवाद के साथ साथ उसके वैचारिक प्रभाव को भी पहचानना जरूरी है। इस स्वतंत्रता दिवस का संदेश केवल उपलब्धियों का उल्लेख नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का संदेश है। आत्मनिर्भरता, तकनीक, युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान, पर्यावरण और वैश्विक नेतृत्व, इन सभी को साथ लेकर भारत को आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। आज तिरंगा केवल लाल किले की प्राचीर पर नहीं लहरा रहा है, वह करोड़ों भारतीयों के सपनों में लहरा रहा है। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में हम अतीत पर गर्व करने का अवसर देते हैं, लेकिन साथ ही भविष्य की जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि हमने 80 वर्षों में क्या हासिल किया, बल्कि यह है कि आने वाले 20 वर्षों में हम भारत को कहां पहुंचाएंगे। संकल्प स्पष्ट है, वर्ष 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत हो। और इस संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति देश का हर नागरिक है।
1: अभी आप स्वतंत्रता के 80 वर्ष, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ता देश पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत ये देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को आज दोपहर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7 सुनिए जन सूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर आप देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन पाएंगे देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से ठीक उसी समय सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनुराधा पौड़वाल, चंदन दास, जसवंत सिंह, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर पंडित साजन व राजन मिश्र का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1351वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर आप बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ गीतों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में गाना लहरी कार्यक्रम के तहत एक ही गीतकार के कुछ

गीत सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। दोपहर 1:10 पर समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा आओ हिलमिल गाएं। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का लुत्फ उठाइए 1:30 पर और दोपहर बाद 2:30। मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसके तहत लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से जिसमें सूचनाओं के अलावा आप कुछ गीत भी सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:30 पर कलाकार होंगे ए हरिहरन और हुसैन बख्श। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा आप कुछ गीत भी सुन पाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर एस के अम्बस्ट से की गई बातचीत सुनाई जाएगी अच्छा उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन। पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिए 6:30 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं दिल ने फिर याद किया। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें। तत्पश्चात नाग पंचमी पर आप चर्चा भी सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान जबकि आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन पाएंगे। संदेशे आते हैं रात 10:00 और रात 10:00 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 4.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 84% और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। और अब एक

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज सवेरे 7:15 पर आप देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन पाएंगे देश रागिनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से ठीक उसी समय सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आज आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर आज आप बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ गीतों का आनंद ले पाएंगे। इसी के साथ ही जनसूचनाएं समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों की पुनर्परीक्षा की घोषणा की। भारतीय हज समिति मुंबई ने द्वीप समूह से राज्य हज निरीक्षक के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कल से इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पासपोर्ट सेवा केंद्र पुराने नियमों को समाप्त कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए नियम बनाने, प्रशासन और लेखा व्यवस्था में तकनीकी बदलाव तथा ऊर्जा संरक्षण जैसी विभिन्न महत्वाकांक्षी सरकारी परियोजनाओं में योगदान देना है। अनुभव मंच केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने

0: वाले कर्मचारियों, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकार में अपने कार्य अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियां मिलने की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य का विषय उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विषयों की पुनर्परीक्षा की सिफारिश की थी। मुख्य भूमि के संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए आरक्षित विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के आवंटन हेतु आवेदन करने वाले सभी संबंधित उम्मीदवारों से कहा गया है कि इन सीटों के लिए जारी अस्थायी वरीयता सूची अंतिम वरीयता सूची मानी जाए। बीएड भोपाल, बी बीटेक, लेटरल एंट्री और स्नातकोत्तर की रिक्त सीटों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि में उपस्थित होने को कहा गया है। बची हुई सीटों को मेरिट के अनुसार बाद में आवंटित किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, ईईजी, ईएमजी और एनसीवी जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय हज समिति मुंबई ने हज 2027 के लिए द्वीप समूह से एक राज्य हज निरीक्षक के चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हज निरीक्षक पर होने वाले कुल व्यय का 50% हिस्सा भारतीय हज समिति वहन करेगा और शेष 50% यूटी हज समिति द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। अधिक जानकारी hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है अथवा किसी भी सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग स्थित अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी के खेल अनुभाग की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस और आगामी SGFI 2026 के अवसर पर अंडर 19 बालकों की श्रेणी में इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इस चयन ट्रायल में दक्षिण अंडमान जोन के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे छात्र भाग ले सकते हैं। टूर्नामेंट कल से 25 अगस्त तक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती स्कूल मैदान में खेला जाएगा। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से अगस्त और सितंबर माह के दौरान श्री विजयपुरम में जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य टेबल

टेनिस चैंपियनशिप, ज़िला ताइक्वांडो चैंपियनशिप और ज़िला तीरंदाजी चैंपियनशिप 22 तथा 23 अगस्त को आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। सभी इच्छुक खिलाड़ियों और टीमों से अपनी प्रविष्टियां निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, लिंक और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में शिप रिपेयर यूनिट में अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी और परियोजना अधिकारी के एक एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय की ओर से सैन्य विभागों द्वारा फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास कल और 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा 19, 21 और 28 अगस्त को भी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्वयं को तथा अपने जहाज़ों को फायरिंग रेंज से दूर रखने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों की पुनर्परीक्षा की घोषणा की। भारतीय हज समिति मुंबई ने द्वीप समूह से राज्य हज निरीक्षक के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कल से इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, देश हमारी पहचान है जो हमारी संस्कृति, इतिहास और भावनाओं से जुड़ा है। हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं होने के बावजूद लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत की शान में अपना सिर झुकाएंगे, इसके गौरव को हमेशा बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, हमारे देश का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। उनके त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत मिला। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। भारत की धरती वीरों की निशानी है, इसके हर कण में शहीदों की कहानी है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, हर रात ये सिखाती है कि अंधेरों के बाद उजाला मिलता है। कितने ही कांटे हो राह में, गुलाब खूबसूरती से खिलता है। सफ़र थोड़ा मुश्किल ही सही, पर चलने वालों को रास्ता मिलता है। जो छोड़ते नहीं कोशिशें करना, उन्हें जीत का परचम मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में सनम बेवफा, इस फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म अर्जुन पंडित का ये गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं, वधुन बनाई हैं दिलीप सेन समीर सेन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और अब एक सूचना।
1: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल हीरोज और हिडन डेस्टिनेशंस। Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार तुमको ना भूल पाएंगे इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने।

पेश है सुधाकर शर्मा का लिखा एवं हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे।

और अब अंत में सुनिए फिजा। इस फिल्म का ये गीत, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, रास्ते भले कठिन हो मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए। हौसले डगमगाए ना कभी, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। जीत भले देर से मिले, उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची होनी चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।
1: Good morning, Andaman.
0: अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में।

0: समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में

0: 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से

0: होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोकाटाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
4: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education.

श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद नगमों का आनंद ले रहे हैं और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में चंद नगमें।

अभी आप कुमार सानू की आवाज़ में चंद नगमों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं दीवार इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बोल साहिर के हैं, वधुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अभी आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपके दीवाने। इस फिल्म का ये गीत बोल आनंद बख्शी के हैं, वह धुन बनाए हैं राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म याराना का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और साथियों ने, बोल अनजान के हैं।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाथा चल का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित साजन व राजन मिश्र का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ तबले पर नंदन मेहता और हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर ने संगीति की है। तो आइए पंडित राजन व साजन मिश्र का गाया पहले सुनते हैं राग जय जय बंती। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है ईरी पिया हम जानी, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

Magadega ma ba, taba magadega ma ba, ma ba ni da ni da ni da.

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
4: श्रोताओं, इस समय आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजन व साजन मिश्र का गायन सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है इनका गाया राग बसंत, जो तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं, फुलवा सब फूल रहे बन में।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजन व साजन मिश्र का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने पागलपंती फिल्म से लिया था, जिसे लिखा था शब्बीर अहमद ने, संगीत से सजाया था तनिष्क बागची ने व आवाजें थी नेहा कक्कर और मीका सिंह की। अब आपको सुनवाते हैं दिबौड़ी फिल्म का गाना अरको और अरिजीत सिंह की आवाजों में। बोल मनोज मुंतशिर के हैं व धुन बनाई है अरको ने।

अब आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना, शेफाली, विशाल ददलानी और बेनी दयाल की आवाज़ों में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य व संगीतकार हैं प्रीतम।

बादशाह कमाल खान और ममता शर्मा की आवाज़ों में अभी आपने दबंग फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था दानिश साबरी ने व संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। आइए अब सुनते हैं एक्सरे द इनर इमेज फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज़ में। गीतकार अलका खान व संगीतकार हैं राज आशू।

श्रोताओं, बाबुल सुप्रियो का कैरियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी फिल्म कहो ना प्यार है रही। इस फिल्म में उनका गाया दिल ने दिल को पुकारा काफी लोकप्रिय रहा। इसके बाद बाबुल सुप्रियो की पहचान बॉलीवुड के प्रमुख मेल प्लेबैक सिंगर में होने लगी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio, every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, इस समय आप एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत बाबुल सुप्रियो के गाए गीत सुन रहे हैं। श्रोता, बाबुल सुप्रियो का संगीत कैरियर सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बंगाली, ओडिशा, कन्नड़, मराठी समेत कई भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग की।

श्रोताओं, गायकी के अलावा बाबुल सुप्रियो ने अभिनय और टेलीविजन में भी काम किया। वे लाइव परफॉर्मर और टेलीविजन होस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें सिंगर के साथ साथ एक्टर और टेलीविजन होस्ट के रूप में सूचीबद्ध करता है। इस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी पहचान केवल एक प्लेबैक सिंगर तक सीमित नहीं रही।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: सकता हूँ
1: एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
3: విరామం తర్వాత శ్రోతలందరికీ తిరిగి గానలహరి కార్యక్రమంకు స్వాగతం. శ్రోతలు, గానలహరిలో రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించిన చిత్రాల నుండి పాటలు వింటున్నారు కదా. ఇప్పుడు మరొక పాటను విందాం. దూకుడు చిత్రం నుండి రాహుల్ నంబియార్ పాడిన ఈ పాట మీకోసం.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि यह समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं।
1: बच्चों नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं, होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
2: यस सर।
1: तो आप सीखेंगे ना?
2: यस सर।
1: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब, दूसरी बार फिर लिखिए, होंगे कामयाब,
2: होंगे कामयाब,
1: और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन,
2: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
2: पूरा है विश्वास,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन,
2: हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा लिखिए, होगी शांति चारों ओर, और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
2: होगी शांति चारों ओर,
1: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
2: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
2: पूरा है विश्वास,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
2: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
1: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
2: हम चलेंगे साथ साथ,
1: डाल हाथों में हाथ,
2: डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हो मन में है विश्वास,
2: हो मन में है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
2: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
1: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
2: नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन,
2: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: हो मन में है विश्वास,
2: हो मन में है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
2: पूरा है विश्वास,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन, और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
2: यस सर।
1: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है।

0: और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी ना दिन क दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बाट देख लीजिए, इसकी बोल बाट कैसे है।

0: एक दिन,
1: एक दिन।
0: हो हो मन में है विश्वास,
1: हो हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है।
2: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवें काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो तीन चार।

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या हैं?
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है, तो नलिनी जी आप सिखाइए। एक दो तीन चार।

0: तो ये दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है?
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन, नहीं डर, एक दो तीन,
1: नहीं।

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है। हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे गा और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: अब
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी, 1 2 3 4।

0: तो बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी आप समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गायें सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। पेश है पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। पहला गीत आपको सुनवाते हैं जीवन मृत्यु फिल्म से। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारी ये दोस्त रिग्नी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

अगली फरमाइश आई है गोलाघाट आसम से, रोमेश पेट्रो, रूनू पेट्रो और लकी की। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: श्रोताओं, इस समय आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना। इस गीत को सुनने के शौकीन है भोंगिर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहुद्दीन, फजान फरहान, समीरा, अजमीन और गुड़िया।

हमारे अगले फरमाइश करता है नरगोड़ा से महाराजा कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं शेषनाग फिल्म का ये गीत।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा हमारे सभी दोस्त सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत शक्ति फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है हमारे इन दोस्तों ने, दादा बाबू रोड झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन, बाबू, मिफ्रा, बेबी चाहत और सदिया।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: WF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की

0: चुनाव मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल

तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:33 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति ही चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुर
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि समय बुरा है तो गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल सवेरा जरूर आएगा। बस हिम्मत मत हारना ए मुसाफिर, क्योंकि एक दिन तेरा भी वक्त जरूर आएगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीत, तो आपको हमारे नंबर पर अपना नाम, पता व फोन नंबर पंजीकृत करवाना होगा। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000, और हम आपको कॉल करेंगे, सुनवाएंगे आपके पसंद के गीत। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज के हमारे पहले दोस्त से बात करते हैं, जो कि रहने वाले हैं मध्य प्रदेश से, लोकेंद्र वर्मा जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: हाँ नमस्कार, लोकेंद्र वर्मा जी से बात हो रही है?
2: जी जी बिल्कुल मैडम जी।
0: कैसे हैं आप लोकेंद्र वर्मा जी?
2: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और आपका प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ।
0: चलिए, ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और वैसे आप एमपी से हैं, एमपी के क्या हालचाल हैं?
2: बिल्कुल मैडम जी, उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है और एक ज्योतिर्लिंग है, पर्यटन स्थल भी है
0: जी,
2: और आज सोमवार भी है, और आज एक बहुत ही खास विशेष दिन है
0: जी। जी
2: यहाँ सोमवार में मतलब महाकालेश्वर जी की सवारी निकाली जाती है, और आज नागपंचमी का दिन भी है, तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जो गर्भगृह में है उसके ऊपर शिखर पर एक नागचंद्रेश्वर जी महाराज का मंदिर है
0: जी।
2: इसकी खासियत यह है कि मैडम ये सिर्फ साल में एक बार खुलता है।
0: अच्छा, तो मतलब आज खुलेंगी?
2: हाँ, आज दर्शन हो रहे हैं, रात को 12 बजे से दर्शन चालू हुए हैं
0: जी,
2: जो
0: जी।
2: आज रात के 12 बजे तक दर्शन होंगे, करीब 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं
0: जी। जी, तो मतलब वहाँ पर पर्यटकों का जो है जुमावड़ा बना हुआ होगा, है ना?
2: हाँ, ये तो पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर पूरे साल मतलब प्रतिदिन 1 से 2 लाख यात्री प्रतिदिन आते भी हैं, जाते भी हैं। मंदिरों का शहर है, जैसे उदयपुर जिलों का शहर है, ऐसे उज्जैन मंदिरों का शहर है
0: जी। जी, तो चलिए आज इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, तो कौन सा वो गीत है जो आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
2: ये गीत है मैडम, फिल्म का नाम है रणभूमि, और गीत के बोले पीके शंकर जी की बूटी खुल गई अखियां निंदिया, ऐसा गीत है मैडम
0: जी। जी जी,
2: और कुछ दोस्तों को भी शामिल करना चाहूंगा इस गाने में मैं।
0: जी जी,
2: ये धर्मवीर जी हैं, दिलीप पाहुजा जी, अनूप कुमार जी है, रामशरण विश्वकर्मा जी है, रामबाबू मालवी जी हैं, श्रीपाल गोयल जी है, सोनू जी है, करणवीर पॉल जी है, तुकाराम जी, गंगाधर जी है, धनेश्वर विनायक नास्तिक महाराष्ट्र से, सुनील झा भोपाल से, और बहुत सारे मित्र है मेरे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के।
0: जी जी, चलिए फिर सभी दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत
2: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए दोस्तों, अब जुड़ते हैं मोहम्मद फरमान से, जो कि रहने वाले हैं जिला मुरादाबाद यूपी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो, मोहम्मद फरमान जी से बात हो रही है?
1: जी मैम।
0: आपका इसमें, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
1: जी मैम।
0: जी वैसे क्या करते हैं मोहम्मद फरमान जी?
1: जी मैम, मैं आशालय बनाता हूँ, यानी मैं घर बनाता हूँ मैम।
0: अच्छा, घर बनाते हैं। इसके अलावा क्या शौक रखते हैं आप?
1: शौक मेरा मैम ये रेडियो सुनना और एक दूसरे की कॉल वगैरह आती है दूर दूर से, उन्हें सुनना और मनोरंजन और ज्ञान बढ़ते हैं वो आते हैं, मतलब एक से एक बढ़कर प्रोग्राम आते हैं रेडियो पर, तो ये बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: जी चलिए, अच्छी बात है। और वैसे आपने कहा कि आपको गाने सुनना पसंद है, तो आप कैसे गाने सुनते हैं? नए पुराने, किस टाइप के गाने पसंद है आपको?
1: ये नए गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं और खासतौर से पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
0: पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है ना?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि मैम पुराने गाने मुझे भी और मेरे घर परिवार वालों को सभी को अच्छे लगते हैं मैम।
0: चलिए अच्छी बात है। तो आज इस कार्यक्रम से आप हमसे जुड़े हैं, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है क्रांति। पर गीत के बोले जिंदगी की ना टूटे लली, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी।
0: जी बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।
1: और मैम कुछ आपकी इजाजत है कुछ नाम लेना चाहते
0: हैं? हाँ हाँ जरूर बताइए।
1: जी मैम, सबसे पहले आप मिलिए हमारे साथ मुकेश कश्यप भाई सुनेंगे, महबूब दुकानदार है, बकर भाई है, रऊ भाई है, और जितने भी श्रोता है सभी के लिए डेडिकेट है मैम।
0: तो चलिए फिर हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।

0: चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले दोस्त धर्मवीर जी से, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: धर्म
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, धर्मवीर जी से बात हो रही है।
1: जी, सवाना जी, मुझे लगता है सवाना जी की आवाज़।
0: जी, आपने सही आवाज़ पहचानी है। धर्मवीर जी कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं। इस समय तो दिल्ली का जो मौसम है बहुत ही देशभक्त से पूरा भरा पड़ा है।
0: जी,
1: तिरंगा घरों में तिरंगे, और लाल किले से मात्र हम 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, और जब 21 तोपों की सलामी होती है तो हम अपनी छतों पे, हमारे दादाजी हमारे पिताजी बताते थे, देखो ये तोप की आवाज, अब तिरंगा फैलाया जा रहा है। तो शुरू से ही हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया, तो आवाज आती थी तो इसलिए बताते थे, हम अपने बच्चों को बताते हैं देखो आवाज आ रही है। कि उसकी रिहर्सल पहले होती थी,
0: जी
1: फिर जब 15 अगस्त के दिन उसकी सलामी के समय इसका 21 तोपे चलते थे। अब वो 21 तोपे दूसरी तरह की हो गई हैं, अपने हिंदुस्तान की बनी हुई तोपे हैं, उनकी कुछ आवाज कम हो गई है।
0: जी, तो आपने 15 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट किया
1: इसमें तो एक होता है कि पूरे
0: आप?
1: दिल्ली,
0: जी
1: पूरी पूरी दिल्ली में क्या होता है कि हम लोग तो एक तो तिरंगा अपने घरों में लगाते ही हैं, और दिल्ली में ज्यादातर ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय
0: जी
1: पर्व में दिल्ली में ज्यादातर इसका पतंग उड़ाने का बड़ा रिवाज है।
0: अच्छा, तो आपने भी उड़ाई?
1: हम पहले उड़ाते थे, अब बच्चे उड़ाते। हमारे पास जो पतंग रखने की एक बक्सा होता है, पेटी होती है,
0: जी
1: वो मेरे दादा के हाथ की दी गई हमारे पिताजी को थी, और पिताजी की वो फिर मेरे पास आई, मेरे पास से फिर अब हमारे बच्चे उसको यूज करते।
0: जी चलिए अच्छी बात है, पूर्वजों का जो दिया हुआ चीज़ है वो यूज़ कर रहे हैं बच्चे।
1: हाँ, दिल्ली में पतंग का बहुत ज्यादा शौक है। ये 15 अगस्त के दिन तो आसमान में पता नहीं चलता किसकी पतंग कहाँ कहाँ से क्या पतंगे उड़ रही हैं, पता इतनी पतंगे होती हैं।
0: जी, तो आज इस कार्यक्रम से आप हमसे जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज हमें आप सुना दीजिए पूर्व और पश्चिम फिल्म का, दुल्हन चली पहन के, तीन।
0: जी, बहुत ही
1: हाँ
0: प्यारा
1: जी,
0: सा
1: तो
0: गीत है
1: ये,
0: ये।
1: हाँ ये कार्यक्रम, क्योंकि दुल्हन की तरह दिल्ली में एक सजावट होती है ना,
0: जी
1: तो वो रौनक देखने वाली होती है। हम तो ये कहते हैं कि आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे राष्ट्रीय पर्व पे आप लोग भी एक बार जरूर दिल्ली आए, और एक बार तो अपने देख के जाए कि आने वाली जनरेशन को भी बता पाए कि हाँ ये चीज क्यों होती है।
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: क्रांतिकारियों ने एक बार ये एक गाने में, शहीद फिल्म के गाने में एक बात बोली थी कि जब आप राष्ट्रीय पर्व मनाएं हम लोग को भूल मत जाना। उसमें एक लाइन बहुत सुंदर कवि ने लिखी है कि जब आप देश देश का जो आप ये 15 अगस्त और ये मनाते हैं तो हम लोग को मत भूल जाना। इसलिए अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये किस कारण से क्रांतिकारियों के कारण हुआ है। आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप अंडमान निकोबार में हैं, जहाँ श्री विजयपुरम में हमारी सेलुलर मंदिर है, जहाँ क्रांतिकारी वीर सावरकर जी ने अपना जीवन पूरा वहाँ बिताया।
0: जी,
1: तो उस धरती पे आप रहते हैं, वहां को हमें प्रणाम करने का दिल करता है। आपसे बात करते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि वहां का जो एक आप लोग महसूस करते हैं कि आपने देखा ही होगा वहां का, आप जाते जाके देख भी आए होंगे,
0: आपने इतनी अच्छी अच्छी बात कही है, हमें बहुत ही खुशी हुई। तो
1: और
0: चलिए
1: हमारे कुछ
0: फिर।
1: मित्र हैं,
0: जी जी
1: आज हमारे
0: जरूर
1: कुछ
0: जरूर,
1: मित्र हैं जैसे कि हमारे बेटे केशव नितिन, और सबसे पहले तो आपको मैं सबका धन्यवाद दूंगा जिन आपने हमें याद किया,
0: जी बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं जिनकी अभी कॉल आई थी। इसके अलावा हमारे और भी मित्र हैं जैसे गोल्डी राकेश और पूरन वर्मा, लतीफ, और ये हमारे भगवान सिंह परमार हैं, केसरी सिंह हैं, और उसके अलावा ये हमारे आपके एक विजयपुरम में मोनिका जी हैं,
0: जी
1: सदनी
0: जी
1: कुंडू जी हैं, और पूर्णिमा जी हैं। अभी 3 तारीख को एक श्रोता मित्र ने फोन किया था, उनको बहुत पुराने गाने सुनने का शौक था,
0: जी जी
1: उनका नाम है पाकिजा जी, उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी बात का ध्यान रखा। और
0: जी
1: एक श्रोता और थी, उनका नाम है लिली, लिली जी, और वो शायद आपकी अंडमान से
0: जी जी
1: पुलिस से
0: लिली
1: रिटायर
0: जी
1: हुई हुई
0: जी
1: है। और संदीप मक्कर साहब है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और रमेश प्रजा

0: राष्ट्रपति हैं इधर से, और ये इसके अलावा सभी इतने लोग हैं कि किस किस को हम समय पे याद नहीं रख पाते, क्या थोड़ी हमारी मेमोरी में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो। और इसके सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कल एक हमारे नए मित्र ने फोन किया था सुबह 10 से 11 प्रोग्राम में, कृपा शंकर बर्मन
1: जी,
0: पर वो असली श्रोता नहीं थे, वो कुछ अच्छी एक्टिंग करते हैं और उनका नाम आप लोग बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे, सभी श्रोता मेरी बात को सुन के पहचान गए होंगे।
1: चलिए कोई बात नहीं, हमारे हमें जो कॉल करते हैं हमारे श्रोता ही होते हैं, है ना?
0: नहीं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो आवाज बदल के बहुत अच्छी कलाकारी कर लेते हैं।
1: जी जी जी, ठीक है, फिर आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: ब्रेक के बाद हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले दोस्त के पास और बात करते हैं चलिए उनसे, जो कि यूपी से हैं, आदिल जी। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो, आदिल जी से बात हो रही है मेरी? आपको आवाज़ आ रही है?
3: जी, आपकी आवाज़ आ रही है।
2: जी जी, आदिल जी, इस कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी, शुक्रिया।

0: धन्यवाद।
1: जी जी आदिल जी, वैसे क्या करते हैं आप?
0: हमारा काम है बिल्डिंग पेंट।
1: अच्छा, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं आप।
0: नहीं, बिल्डिंग पेंट, पेंटर।
1: अच्छा, पेंटर हैं आप, चलिए अच्छी बात है।
0: जी,
1: इसके अलावा क्या शौक रखते हैं आप अपने काम के अलावा?
0: इसके अलावा आज 50 साल से संगीत का शौक हो गया,
1: जी।
0: स्कूल टाइम से।
1: तो मतलब वो संगीत का शौक जो है आज भी बना हुआ है, बरकरार है।
0: जी,
1: चलिए अच्छी बात है। तो इस कार्यक्रम से आज आप हमसे जुड़े हैं, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: फिल्म है वक्त,
1: जी, वक्त का कौन सा गीत
0: गाने
1: सुना?
0: के, जी गाने के बोल हैं, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज,
1: जी,
0: कौन
1: वक्त से
0: जाने
1: दिन
0: वक्त
1: और
0: का किस घड़ी बदले मिजाज।
1: जी वक्त से दिन और रात, यही गाना सुनना चाहेंगे है ना?
0: जी,
1: जी,
0: मैं आपका नाम, जी आपका नाम,
1: जी आप कार्यक्रम सुनते रहिए, हम जो है बीच बीच में अपना नाम लेते हैं, तो आप कृपया
0: जी
1: करके ये प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा।
0: जी
1: जी, तो
0: जी
1: चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए अब बात करते हैं असम से के रहने वाले हमारे दोस्त अमल से। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: हमारी बात अमल से हो रही है।
1: जी, मैं अमल बस मिटारी रंगापारा सोनीतपुर असम से। बहुत
0: जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद आपको भी कॉल करने के लिए।
0: जी,
1: आप
0: कैसे
1: कैसे हैं
0: हैं?
1: बताइए।
0: हम
1: मैं
0: बहुत अच्छे
1: तो बहुत
0: हैं।
1: अच्छे हैं। तो आज बारिश भी हो रहा था सुबह को, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, मतलब आज असम का मौसम बहुत ही खूबसूरत है ना?
1: हाँ
0: वैसे
1: हाँ हाँ
0: आपको
1: कहीं कहीं
0: कैसे मौसम पसंद है, ठंडी, गर्मी, बारिश?
1: जैसे तो वैसे बारिश को तो हमारे खेत में तो बारिश आई है, तो बारिश को भी अच्छा ही लगता है। तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो रह नहीं पाता है, थोड़ा सा ठंडा मौसम को ही अच्छा लगता है।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो ऐसे मौसम में वो कौन सा प्यारा सा गीत है जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम सुनना चाहेंगे?
1: सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए, जो मूवी का नाम है क्या दिल ने कहा।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।
1: जी, तो
0: तो फिर चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: दोस्तों का नाम ले लो।
0: हाँ, जल्दी से बता दीजिए।
1: मेरे दोस्त है भाईकोन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पत्र, रोनू पत्र, लाकी और संजय मुंडा, गागेरा भा और देवाशीष हजारिका है। और मैं सुन रहा था रमेश प्रजापति भैया के साथ है, मैं प्रोग्राम सुन रहे थे, मेरे मोबाइल में सुन नहीं पा रहा इसलिए फोन करके सुन रहा था। उनको भी डेडिकेट रहेगा, और भगवान सिंह परमार को, और राकेश को, पूरन वर्मा को, लखेंद्र वर्मा और शिवा लोहार, और हमारे इंद्रपाल सिंह और तानुश्री, सभी आकाशवाणी सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: जी
1: और दिल्ली से है धर्मवीर, उनको भी
0: जी
1: डेडिकेट
0: तो
1: रहेगा।
0: चलिए सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: ओ,
0: गीत।
1: आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ भी सुन रहे हैं, और त्रिपुरा से, और अविनाश तेली भी, भूल
0: जी, तो चलिए फिर
1: गए
0: सब
1: थे मैंने।
0: मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: चलिए अब बात करते हैं, जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं पोरबंदर गुजरात से, मोहम्मद अली जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो, मोहम्मद अली जी से बात हो रही है
1: हाँ, मैं जी बोल रहा हूँ।
0: जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। ठीक
0: कैसे हैं आप
1: है मैम।
0: जी? और वहाँ गुजरात के क्या हालचाल है, मौसम कैसा है वहाँ का
1: यहाँ तो गुजरात में तो पूरा पानी भर गया हुआ है।
0: जी? बारिश का मौसम चल रहा है
1: बारिश का मौसम चल रहा है
0: जी।
1: जी। नहीं
0: और वैसे क्या करते हैं आप
1: भाई, यहाँ मैं सर्विस करता हूँ।
0: जी।
1: हाँ, विद्या देवी। बस
0: और इसके अलावा क्या शौक रखते हैं आप?
1: गाना
0: सुनना
1: सुनना
0: जी। अच्छी
1: पूरा
0: बात है।
1: हमेशा हमेशा पूरा

0: ऑल डे एवरी डे सुनते रहता हूँ।
1: अच्छी बात है, क्योंकि गीतों के माध्यम जो है हमारा मन भी शांत होता है, दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है ना
0: हाँ जी
1: जी।
0: मैम, हाँ जी मैम,
1: तो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मुझे बॉर्डर सुधा है मैम,
1: बॉर्डर का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: संदेश से आते हैं
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।
0: जी।
1: तो चलिए फिर हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि चलते रहो तो रास्ते मिलेंगे, बढ़ते रहो तो मुकाम मिलेंगे। किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि मेहनत करोगे तो मौके तमाम मिलेंगे। श्रोताओं, इस प्यारे से विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है दोपहर के 3:30। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का ये सफर आज आप तय कर रहे हैं शबाना के साथ। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। वक्त कभी रुकता नहीं, कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन अपनी यादें जरूर छोड़ जाता है। हर पल अपनी एक कहानी लेकर आता है और यादों में सिमट जाता है। वक्त की यही खूबसूरती है कि ये कभी रुकता नहीं। जो पल आज हमारे पास है वही सबसे कीमती है।

दोस्तों, कल का किसी को पता नहीं होता, इसलिए हर पल को दिल से जीना चाहिए। वक्त की सबसे बड़ी सीख यही है कि आज को खास बनाओ और मुस्कुराहट और प्यार को बांटते चले जाओ।

दोस्तों, समय के साथ ज़िंदगी एक अनोखे सफ़र की तरह आगे बढ़ती रहती है। कभी खुशी मिलती है, कभी नए इम्तिहान, लेकिन मुस्कुराते हुए चलना ही ज़िंदगी का असली हुनर है और हर मोड़ पर एक नया अनुभव हमारा इंतज़ार करता है।

दोस्तों, समय के साथ हर इंसान एक सवाल पूछता है कि ज़िंदगी आखिर क्या है। कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद और कभी तो इंतज़ार। हर मोड़ पर एक नई पहेली सामने आती है। इसी पहेली को समझकर चलना ही ज़िंदगी कहलाती है।

दोस्तों, हम सब वक्त के मुसाफिर हैं। हर दिन एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रास्ते यादगार बन जाते हैं, कुछ लोग हम सफर भी बन जाते हैं, और इसी तरह जिंदगी के साथ चलना ही पड़ता है।

दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है जो चलते रहने का नाम है। वक्त कभी रुकता नहीं और हमें भी नहीं रुकना चाहिए। हर रास्ता कुछ नया सिखा कर जाता है और हर मोड़ पर एक नई मंजिल मिलती है।

दोस्तों, समय की सुई कभी रुकती नहीं। आज की ये शाम भी यादों का हिस्सा बनने जा रही है। उम्मीद है कि इस संगीत से भरे सफर ने आपको अपने गुजरे हुए कल, जीते हुए आज और आने वाले कल की याद दिलाई होगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं।
1: जी।
2: अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब

0: करनी पड़ती है. तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं. अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है वो चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये. तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल.
1: बिल्कुल.
0: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था. और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है. तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है.
1: बिल्कुल. और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है.
0: हाँ.
1: इस बारे में बताइए.
0: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है. स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट. इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट. फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट. तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है. जो दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है. तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन. तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन. मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है. बट जो प्रिवेंटेबल है, वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं. अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है. सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन. क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक.
1: तो वो पूरा साल,
0: हाँ, साल जाता है. ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है. आई कॉल इट लाइक,
1: मतलब क्या होता है,
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती
1: है, में हम पढ़ते हैं.
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी. 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है. तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड. तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है. और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है. बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट. बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है.
1: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण.
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं. या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है.
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है. पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है.
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी, हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है. मतलब फर्स्ट साइन इज पेन.
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है. कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक

0: जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है. पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो. अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग. मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको. एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया. तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया. तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं. तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा. तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते. देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे. पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है. वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए. अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में. ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं.

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने के वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब

0: तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है.
1: जी
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड.
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए.
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं. ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इंपॉर्टेंट.
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है. और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में
0: एक्सरसाइज, सही मात्रा
1: है ना, और
0: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस Not too much.
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए.
1: जी,
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए.
1: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी.
1: हाँ, दोनों चीजें
0: दो अलग हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं.
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं.
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है. ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी. ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी. अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं. मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है. विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है. हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है. मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है. एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है. दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम.
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है. जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप. पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए. तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है. बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है. मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए. तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है. अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हॉर्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड. और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में. अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए. क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है.
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है. मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए. सिर्फ लंबा नहीं, अच्छा जीवन चाहिए.
1: बिल्कुल सही है. आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं.

0: हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहां पर। तेरा जिक्र है
1: तेरा
0: या
1: जिक्र है,
0: इत्र
1: करेक्ट
0: है? क्या गाना है ये,
1: सुनते बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं। एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइन करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर वो आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उस

0: वापस लाना है वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो मैकेनिज्म भी
1: रिलैक्सेशन
0: की जरूरत है, तभी सब चलता है
1: जी।
0: एक ये करना है एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
1: Okay.
0: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
1: तो वो एक्टिविटी चेंज
0: हो
1: जाएगी।
0: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर
1: तो
0: हम नियम से
1: है।
0: चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट
0: मुश्किल ही है
1: ना पड़े।
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
1: जी,
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
1: क्या बात,
0: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला।
1: हाँ।
0: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं।
0: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है।
0: एक्सट्रीम है।
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई ग्रेजुएट 1989 और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो वेन आई ज्वाइंट 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे। मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है, मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था। जो अभी बढ़ गया है ये
1: जी।
0: सब इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है, अगर आप आए समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी,
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी।
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ

0: हो जहां क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी,
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट, सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे, और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरे शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें
0: और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो, ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ, लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था MBBS और उसके बाद MD या MS, नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84 जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था, फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड है इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे।

0: ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट,
1: बहुत
0: टेन
1: लंबा
0: टेन हाँ
1: टाइम।
0: टेन
1: जी
0: ईयर्स जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है,
1: जी
0: मैं कभी उसमें नहीं थी। बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और
1: जरूरत
0: लगता है,
1: पड़ती है।
0: और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस
1: उनकी
0: एल्बो
1: इंजरी
0: एंड
1: थी।
0: शोल्डर, या
1: जी जी
0: या
1: जी
0: सो या ही इज बीन अ प्लेजर। और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या बात
0: हो
1: है
0: ही नहीं सकता है कोई भी नहीं।
1: जी
0: मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडन्ट हैव मैटर्ड टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज।
1: वाह
0: बहुत ही हम्बल आदमी है, एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोज 10 ईयर्स दैट आई वॉज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल।
1: क्या बात है।
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है।
1: जी
0: ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं
1: क्या बात है। तो
0: जिनको।
1: जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा, वो क्या फीलिंग
0: मुझे कुछ
1: होती
0: अलग नहीं लगता है, नहीं सच
1: है
0: नहीं लगता है,
1: जी जी
0: इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन दैट आई
1: राइट
0: रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड। कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है, कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके
1: कि
0: दिखाएं
1: ये प्रॉब्लम हो रही है।
0: तो अच्छा लगता
1: वाह
0: है।
1: वाह क्या
0: दीज
1: बात
0: आर द पर्क्स,
1: है। बिल्कुल
0: साइड
1: बिल्कुल
0: पर्क्स,
1: ऑफ कोर्स ऑफ
0: बट
1: कोर्स।
0: नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट,
1: जी
0: एवरीबडी
1: बातें
0: इज।
1: चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही हैं जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह ली
0: पर
1: है,
0: मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर
1: नॉर्मल लोगों
0: लोगों से, और मुझे तो
1: की
0: प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज
1: बिल्कुल
0: वो
1: मैं समझ
0: उनके
1: सकता हूं।
0: प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो,
1: जी
0: लाइक दीज पीपल आई नो मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वो ही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए,
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है तो
0: दंगल का,
1: दंगल का
0: यस
1: गाना सुनवाते
0: यस।
1: हैं, नैना।

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
1: मैं वो उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटे छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है,
1: बहुत
0: सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट, फंक्शन वो ही नहीं आता,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
1: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो,

0: और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा।
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी
0: यस,
1: कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस।
1: जी
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी। अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है। ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है। पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है, तो वीकनेस बढ़ जाता है। उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के। तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो बहुत ही
0: फ्रैक्चर
1: कॉमन चीज।
0: की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल, दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो
1: बिल्कुल
0: वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है।
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय हैं
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी
0: और
1: हैं।
0: वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week यूज टू कम टू क्लिनिक, एंड 95 ही पास्ड अवे। 1 day before that ऑल्सो ही हैड रिक्वेस्टेड होम विजिट फॉर एक्सरसाइज।
1: क्या बात है,
0: तो
1: इतना
0: सम
1: ध्यान रखने
0: पीपल आर
1: वाले लोग भी
0: रियली,
1: हैं।
0: और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: और हमारे
1: क्या
0: क्लिनिक
1: बात
0: में
1: है,
0: गाना गाते थे
1: क्या बात है,
0: ट्रेडमिल पे चलते
1: क्या क्या
0: चलते
1: बात है, क्या बात है। जिस स्टूडियो में यहां हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां भी
0: हाँ, वो
1: हम
0: भी 10 साल
1: पंडित
0: आए
1: जसराज
0: हमारे
1: को
0: पास
1: रिकॉर्ड कर
0: जस्ट
1: सकते हैं।
0: एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा,
0: या
1: वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
0: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स।
1: एक्सरसाइज एंड डाइट, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो। जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल।
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस ले

0: एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है।
1: यस
0: डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
1: थैंक यू
0: मुखातिब
1: वेरी
0: होके
1: मच,
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू।
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है, शाम के 5 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

अभी आपने आनंद लिया तमिल कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। शाम के 5:30 हुए हैं। आप सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां सब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय खुद को संभालना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उस समय सीखी गई बातें जीवन भर हमारे साथ रहती है। आज के इस नेक विचार को साथ लिए चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए? प्रश्न में एक बार फिर दोहरा देती हूँ, बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। और अब आइए साथियों, सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस के अम्बस्ट।
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जब हम बात मिट्टी की करती है, मृदा प्रबंधन की हम जब करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लोग जो भी ज़मीन में दिखता है उसको मिट्टी समझते हैं, तो एक किसान की दृष्टि से, कृषक की दृष्टि से मिट्टी से क्या तात्पर्य होता है?
2: देखिए, मिट्टी अगर जहाँ तक हम जब मृदा की बात करते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है जब जहाँ पर हम फसल लेते हैं
1: जी।
2: और ये क्यों उपयोगी है, इसका एक मानक है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में करीब करीब 100 साल लग जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और चूंकि 100 साल लग जाते हैं, इसलिए हमारे लिए मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इस मिट्टी में ना केवल धूल है, जिसको आप मिट्टी कहते हैं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है
1: जी।
2: इसमें साथ ही साथ में बैक्टीरिया हैं, पानी है, हवा है, मिनरल्स हैं, एंथ्रोपोड्स हैं और नेमाटोड्स हैं, अर्थवर्म्स हैं। ये सारी चीज़ मिलकर हमारी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती है, और इन सब चीज़ को मिलाने से ही, जिसको हम संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये मिट्टी होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 100 साल लगते हैं, तो इसी से साफ हो जाता है कि मिट्टी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है
2: जी।
1: तो इस मिट्टी को ऐसे ही बनाए रखने, इसका संरक्षण करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसका नुकसान कैसे हो सकता है, पहले वो बताएं आप।
2: देखिए, मृदा संरक्षण हमारे लिए पर्टिकुलरली अंडमान और निकोबार द्वीप के संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विशेष तौर पे इसकी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेंस बारिश होती है, जिसमें बहुत तेज़ी से जो बारिश है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ज़मीन है वो ढलाऊ वाली ज़मीन है, हिल वाली ज़मीन है, जिसमें कि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है,
1: ढलान ज़्यादा है।
2: ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बारिश होती है उस समय ये मिट्टी पर जब स्ट्राइक करती है और ये मिट्टी डिटैच हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं मिट्टी के जो कण हैं, और कण अलग होने के बाद में ये धीरे धीरे बहना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है कि जो हमारी फर्टाइल पार्टिकल्स हैं वो बहने शुरू हो गए हैं। कुछ समय के बाद में यही मिट्टी धीरे धीरे एक रिल का फॉर्म कर लेता है, जिसमें छोटी छोटी सी नालियाँ आपको दिखती हैं, बाद में यही रिल जुड़ते हुए एक बड़ी नाली का रूप धारण कर लेती हैं, और इन्हीं नाली के जरिए हमारी जो बहुत ही उपजाऊ पार्टिकल्स हैं, क्ले मिट्टी जो होती है, ऊपर से बहकर पहाड़ियों से वो नीचे बहकर बहना शुरू कर देती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका संरक्षण करें।
1: अच्छा, तो इस तरह से जो नुकसान होता है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपने जो कहा कि जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर की होती है वो बहकर पूरी नीचे चले जाती है, और पूरी तरह से मिट्टी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि बंजर हो सकती है।
2: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि अक्सर ज़मीन ढलाओ है, तो उस ढलान वाली ज़मीन पर किस तरह के कृषि कार्य करें, क्या क्या सावधानी बरतें?
2: यहाँ हमारे द्वीप समूह में मुख्यतः सुपारी और कोकोनट के प्लांट्स ही

0: और ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी प्रकार से कवर क्रॉप जैसे कि घास या इस प्रकार का अगर हट गया है तो ये ज़रूरी है कि हम उस जगह के पर घास को लगाएं,
1: अच्छा, यानी ज़मीन नंगी ना रहे
0: नंगी ना रहे,
1: जी।
0: क्योंकि जो बारिश का डायरेक्ट इम्पैक्ट है सबसे पहले हमको उसको रोकना है जो कि सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच ना करे। तो कोई ना कोई कवर क्रॉप को लगाना बहुत ज़रूरी है। और कवर क्रॉप के साथ में अगर आपकी ढलान वाली ज़मीन अगर नंगी हो गई है या आपने कोई टेरेसिंग का काम किया है जहाँ
1: सीढ़ी
0: पर
1: बनाते हैं जी।
0: सीढ़ी वाला जो बनाने का काम है, तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं इस सीढ़ी में आपकी जो बेंचेस होते हैं बेंचेस का स्लोप इनवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बेंचेस हैं उसका स्लोप अंदर की तरफ होना
1: ढलान
0: चाहिए,
1: उनकी अंदर की
0: अंदर
1: हो।
0: की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम इनवर्ड स्लोप रखते हैं तो जो बारिश का पानी मुंह से निकलने वाला होता है वो नीचे आपके कोने में जाएगा, उस पानी के लिए एक छोटी ट्रेंच बनाना चाहिए। ये ट्रेंच भी नंगी नहीं होनी चाहिए, इसमें घास लगी हुई होनी चाहिए। इसको हम वैज्ञानिक तौर से इसको ग्रास्ड वाटर वेस कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और ये जो घास लगाकर जो ट्रेंच बनती है इसको किसी कोने पर ले जाकर इसको ज्वाइन करते हुए चाहे तो ग्रास्ड वाटर वे से या पक्की सीमेंट की नाली बनाकर इस पानी को नीचे तक ले जाना चाहिए। इसमें कई बार इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को सेफली नीचे ले जाया जा सके। एक कहावत है इसमें जिसमें कहते हैं कि पानी को दौड़ने मत दो, पानी को थाम के रखो,
1: जी।
0: क्योंकि जब पानी दौड़ना शुरू करता है तो ये नुकसान बहुत करता है,
1: अपने साथ बहुत कुछ ले जाता
0: बहुत
1: है।
0: कुछ ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है, आपकी फर्टिलिटी ले जाता है। तो इसलिए पानी को हमें आराम से चलते हुए निकालना है और उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को तोड़ते हुए लेके जाना है ताकि वो दौड़े ना, थाम के चलो।
1: बिल्कुल।
0: तो नाली का इस्तेमाल करते समय में हम उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम शूट स्पिलवे कहते हैं और या ड्रॉप स्ट्रक्चर कहते हैं, ताकि जो वेलोसिटी है पानी की
1: पानी की
0: उसको
1: गति
0: हम कम
1: उसको
0: कर
1: कम
0: सकें,
1: करते हैं।
0: कम कर सकें।
1: अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि अगर सीढ़ी नुमा खेत किसान भाई करते हैं,
0: जी
1: ट्रेंचेस बनाते हैं, जो बेंचेस बनाते
0: जी
1: हैं, तो उसमें ढलान अंदर की ओर होनी चाहिए और उसको पतली पतली नालियाँ, उसमें भी घास लगी होनी
0: घास
1: चाहिए
0: लगी हुई होनी चाहिए,
1: और ज़मीन नंगी बिल्कुल नहीं होनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए, कुछ
0: बिल्कुल
1: ना कुछ उसमें होना चाहिए।
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा ख़ास तौर पर जो पहाड़ी ज़मीन है, ढलान में किसान भाई नारियल सुपारी लगाते हैं, तो उसके लिए जब रोपाई होती है तो गड्ढे वगैरह खोदते हैं, तो ऐसे में भी मिट्टी का कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ बातें इसमें भी ध्यान देनी है।
0: जी इसीलिए हमारे द्वीप समूह में ये ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं इनको आप ढलान वाली जगह पे ना लगाएं,
1: जड़ वाली जो
0: जो
1: फसलें
0: जड़ वाली
1: हैं।
0: फसलें हैं, और ऐसी इंटर क्रॉप्स लें जैसे आपका इवन फ्लावर्स भी है और उस फ्लावर्स वगैरह को भी ले सकते हैं जिनमें कि आपको इनकम तो मिले लेकिन ज़्यादा से कम टिलेज ऑपरेशन करना पड़े।
1: अच्छा, कर्षण क्रियाएं कम से कम होनी
0: हाँ कम
1: चाहिए,
0: से कम
1: खुदाई
0: करना,
1: वगैरह जो
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, और प्लांटेशन के बीच में नारियल सुपारी के बीच में आप लोग सलाह देते हैं, कुछ नहीं तो चारे वाली फसलें,
0: चार
1: घास उगा सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, इसका डबल फायदा हो जाता है, घास तो मिल ही जाती है साथ ही साथ में ये हमारी जो मृदा का क्षरण है
1: वो
0: उसको
1: भी रुक
0: रोकने में
1: जाएगा।
0: भी काफ़ी मदद करती है।
1: चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरह से जो बहुमूल्य मिट्टी है उसको बहने से या नष्ट होने से रोक कर जो उपजाऊपन की शक्ति है उसको बना के रखें।
0: जी
1: इसके अलावा एक जो पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, चाहे वो धान की फसल हो या चाहे हमारी बागानी फसलें हों, तो पहले हम धान की फसल की बात करते हैं, जो निचली ज़मीन है,
0: जी
1: तो वहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्वों को किस तरह से किसान भाई बनाए रखें ताकि जो उपजाऊपन की शक्ति है वो बनी रहे।
0: मिट्टी की जहाँ तक उर्वरकता की बात है, जब हम हमेशा कंटिन्यूअस रूप से धान के ऊपर धान हर साल बाई साल लेते चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने लग जाती है।
1: अच्छा,
0: और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक तरीका तो यह होता है कि हम वहाँ पर क्रॉप रोटेशन लें, यानी कि फसल चक्र को परिवर्तित करते रहें। ये जो हमारा एक साल धान, दूसरे साल अगर हम कोई और क्रॉप लें जो कि पल्स वाली हो, जो कि आपकी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती हो,
1: दाल वाली फसलें
0: दाल
1: हो।
0: वाली फसलें हो, तो इस प्रकार से कुछ ऑल्टरनेट करें जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट बैलेंस मिट्टी में है वो बना रहे। लेकिन अगर हम सिर्फ धान ले रहे हैं ऐसी स्थिति में ये है कि जब भी हम हर साल धान के लिए जुताई शुरू करते हैं तो सेकंड प्लाउ के समय में उस समय आप इसमें हरा जो मैन्योर होता है हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं उसको, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ढांचा वगैरह जो है
0: ढैंचा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जिंदा बल्ली बहुत
1: जी हाँ।
0: मात्रा में अवेलेबल होता है तो जिंदा बल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये माना गया है कि करीब करीब 6.6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम जिंदा बल्ली

0: को प्लाउ के करते समय में डाल दें और मिक्स कर दें तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिंदा बल्ली के अलावा 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम गोबर की खाद, वो भी इसको हम अगर दूसरे प्लाऊ के समय में अगर मिला दें तो इसका हमारा जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है उससे काफ़ी हद तक उसकी भरपाई हो जाती है।
1: जी
0: जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, क्योंकि आजकल हम जो बात करते हैं उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं,
1: समन्वित पोषक तत्व
0: समन्वित
1: प्रणाली जो
0: पोषक
1: है।
0: तत्वों के, तो इंटीग्रेटेड में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके ये गोबर की खाद, ग्रीन मैन्योर, इसके साथ ही साथ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि हम बेसल डोज के रूप में 50% नाइट्रोजन, जो रिकमेंडेड डोज होता है उसका 50% नाइट्रोजन, 100% फास्फोरस और 75% पोटाश को इस्तेमाल करें।
1: अच्छा, यानी जब जुताई करते हैं उसी समय खेत में डाल दें, 50%
0: हाँ,
1: नाइट्रोजन देना है।
0: इसका इस्तेमाल उस समय किया जाए। अब रिकमेंडेड डोज जो हमारे धान के लिए किया जाता है वो जनरली इसमें ये कहा जाता है कि 90 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटाश, ये रिकमेंडेड डोज है। तो अब इसका 50% नाइट्रोजन यानी करीब करीब 45 kg नाइट्रोजन को हमको एज ए बेसल डोज डालना चाहिए, जबकि 60 किलोग्राम फास्फोरस डालना चाहिए और साथ ही साथ करीब करीब हमें 30 किलोग्राम पोटाश को
1: पोटाश
0: डालना
1: ये
0: चाहिए,
1: जुताई करते समय रोपाई से पहले खेत में दे देनी
0: रुपाई
1: चाहिए।
0: से करते समय कर देना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, तो ये तो इसके बाद फिर जो उर्वरकों का प्रबंध है ना वो खड़ी फसल में करना चाहिए।
0: हाँ, इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में ये कहा जाता है कि जो 40 से 50 दिन के बाद में जो बची हुई मात्रा है वो हमें देना चाहिए। तो जो हमारा 25% नाइट्रोजन जो बचा हुआ है, क्योंकि हमने पहले 50% ही दिया है,
1: दिया था।
0: तो अब 25% नाइट्रोजन 40 से 50 दिन के बाद में दें, जबकि 60 से 70 दिन के बाद में आप बचा हुआ 25% नाइट्रोजन और 25% पोटाश जो
1: पोटाश
0: है इसको देकर पूरा जो 100% रिकमेंडेड डोज है
1: वो दे
0: उसको दे
1: सकते हैं,
0: सकते हैं।
1: अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अक्सर जो किसान भाई हैं कुछ एक दिक्कत ये होती है कि वो नाइट्रोजन तो यूरिया के रूप में देने में बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, लेकिन जो पोटाश हुआ या फास्फोरस हुआ इन उर्वरकों का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं। तो इस तरह का जो इस्तेमाल है इससे भी मिट्टी की दशा पर और उपजाऊपन की शक्ति पर कुछ असर होता है।
0: बिल्कुल फ़र्क पड़ता है,
1: जी
0: क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसमें संतुलन का हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है, ख़ास तौर से जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका संतुलन बना हुआ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो पोटाश की कमी को दूर करने के लिए उसको
1: उसको भी
0: डालें,
1: देने चाहिए।
0: और फास्फोरस जो सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में अगर फास्फोरस हो तो जो रिकमेंडेड डोज है उसमें देना ही फायदेमंद होता है।
1: यानी तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना से कि सिर्फ यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि उसे
0: हाँ,
1: हरियाली थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है।
0: नहीं, ये तीनों का इस्तेमाल हमारी मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई धान की फसल की, इसके अलावा जो बागानी फसलें हैं
0: जी,
1: उसके लिए पोषक तत्व तो प्रबंधन कैसे हो?
0: बागानी फसलों में मुख्यतः हमारे पास नारियल और सुपारी के बगीचे हैं।
1: जी
0: तो नारियल के जो पौधे होते हैं उसमें जनरली ये कहा जाता है नारियल और सुपारी दोनों के लिए कि इसमें कंपोस्ट उनकी आयु के हिसाब से, जो पेड़ पौधे हैं उनकी आयु के हिसाब से कंपोस्ट डालना चाहिए। और ये एक वैज्ञानिक तौर से निष्कर्ष निकला है जिसमें कि अगर 2 साल से कम की के आयु के पौधे हैं, चाहे वो नारियल के हों या सुपाड़ी
1: सुपारी
0: के,
1: के जी
0: तो दोनों ही स्थिति में हमें 2 किलोग्राम प्रति प्लांट की दर से कंपोस्ट खाद का
1: देना
0: इस्तेमाल
1: चाहिए।
0: करना चाहिए।
1: जी
0: अगर ये जो पौधों की आयु 2 से 5 साल के बीच में हो तो 5 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि यही प्लांट्स की आयु अगर 5 साल से ज़्यादा हो तो 10 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर 20 साल तक की जो पेड़ हैं, 10 से 20 साल के पेड़ हैं, तो उसमें आपको 20 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कंपोस्ट की खाद का
1: देनी
0: इस्तेमाल
1: चाहिए।
0: करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश,
1: पोटाश
0: इसको भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये तभी जाकर आपका एक समन्वित पोषक तत्व प्लांट्स को मिलते हैं।
1: जी

0: एक इसमें ये होता है कि 5 साल एक एवरेज है कि करीब 500 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 1 किलो 200 ग्राम पोटाश प्रति प्लांट, ये आपको सुपारी और नारियल के पौधों में डालना चाहिए
1: हर साल।
0: हर साल।
1: अच्छा
0: इससे क्या होगा कि आपका एक मिट्टी में जो पोषक तत्व का समन्वय है और सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको के पौधों को मिल सकेंगे और आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सकेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल बात अक्सर जैविक कृषि की होती है, ऑर्गेनिक
0: जी
1: फार्मिंग जिसे कहते हैं,
0: जी
1: और उसमें किसानों को कहा जाता है कि आप प्राकृतिक खाद, हरी खाद और जो केचुआ खाद, कंपोस्ट, इन सब का ही प्रयोग करें और उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें।
0: जी
1: तो अगर इन दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आप क्या फ़र्क बताएंगे?
0: देखिए, रासायनिक खाद, जहाँ तक हम सिर्फ रासायनिक खाद का जब इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे मिट्टी की दशा में भी इसमें नुकसान होता है। मिट्टी में एक कॉम्पैक्टनेस आता है और कॉम्पैक्टनेस के साथ ही साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, कुछ लंबे समय के बाद में वो फर्टिलिटी लेवल कम हो जाती है।
1: अच्छा
0: इसके अलावा मैं यही रासायनिक खाद जो कि थोड़ी मात्रा में जो बच जाते हैं, जिसको हम रेसिड्यूअल कहते हैं इफेक्ट, वो जाके हमारे पानी वगैरह में जाके मिलते हैं और इन रसायन का उपयोग कहीं ना कहीं से हम इनडायरेक्टली रूप से हमको करना पड़ता है और इसका हमारे हेल्थ पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
1: अच्छा
0: तो ये ज़रूरी है कि रासायनिक खाद से हमारी उपज तो ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में दोनों पर अगर ध्यान करें तो कंपोस्ट वाली खाद, केंचुए वाली खाद, ये दोनों बहुत ही मूल्यवान हैं। और मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि किस खाद का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब दूसरी बात है कि जो कंपोस्ट वाली खाद है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें खुद को बनाना होता है। ये हमारा फ़ायदा भी है क्योंकि हमारे जो अवेलेबल मटेरियल है उसी से बन भी जाता है। थोड़ा सा ये देखा गया है कि कंपोस्ट वाली खाद को डालने से ऐसा लगता है कि ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है, तो किसान भाई ये तुरंत जो है रासायनिक खाद का उपयोग करने लगते हैं कि इससे ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग रन पे ऐसा देखा गया है, विशेष तौर पे जहाँ पर कि रेनफेड एरिया है, जो हमारा एरिया है, यहाँ पर कंपोस्ट वाली खाद या केंचुए वाली खाद से ग्रोथ बढ़ती है और ईल्ड भी बढ़ती है।
1: शुरुआती अवस्था में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी वृद्धि में कमी नज़र आए,
0: जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आखिरकार जो है वो वृद्धि
0: बिल्कुल
1: बराबर हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: चलिए,
0: सही है।
1: तो हमारे इन द्वीपों में जो किसान भाई हैं वो अगर इन खादों का, और जैसे आपने बताया जिंदा बल्ली वगैरह यहाँ पे प्रचुर मात्रा में
0: जी
1: उपलब्ध है,
0: जी
1: तो इसका प्रयोग करें तो मिट्टी की जो दशा है वो और अच्छी हो सकती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन के बारे में अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी है, किस तरह से उनको कटने से बचाया जाए, उपजाऊपन की शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि किसान इन बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे। आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने डॉक्टर एस के अम्बस्ट से की गई ये बातचीत सुनी, जिसका विषय था अच्छे उत्पादन के लिए मृदा प्रबंधन। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रूपए तक की पुरस्कार राशि

0: राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अब चलिए साथियों, बदलते मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपको सुनवा देते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 46 मिलीमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 84 से 86% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 74 से 76% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 25 से 27 किलोमीटर प्रति घंटे रहने तथा हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश सामान्यतः बादल छाए रहने से लेकर बादल युक्त रहने की संभावना है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने, मेघ गर्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा जल भराव से बचाव के लिए खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उर्वरकों एवं पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में करें तथा वर्षा से ठीक पहले इनका प्रयोग ना करें। मेघ गर्जन एवं तेज हवाओं के दौरान पशुओं को सुरक्षित आश्रम में रखें। 19 अगस्त तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान एवं निकोबार तट के साथ तथा उससे सटे समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज सतही हवाएं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं, चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति उग्र रहने की संभावना है, अतः मछुआरों को कल तक अथवा अगले आदेश तक अंडमान सागर में ना जाने की सलाह दी जाती है। साथियों, अभी आपने बदलते मौसम के बारे में ये जानकारी हासिल की और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई थी केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से।
0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अब आइए कार्यक्रम के माहौल को बदलकर ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: और अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 से 40 ग्राम वजन के कंद बुवाई के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का आज का समय अब यहीं पर पूरा होता है। कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। तब तक जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पॉप मसाला।

पॉप मसाला कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना शूल फिल्म से। आवाज़ें थी सपना अवस्थी, चेतन शशिताल और साथियों की।

0: ये था हाउसफुल टू का गाना। गायक थे श्रेया घोषाल, शान और साथी।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सलमान खान की आवाज में। फिल्म का नाम है किक।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: पॉप मसाला कार्यक्रम का अगला गीत दे दनादन फिल्म से। आवाजें दी हैं कुणाल गंजावाला और सुजैन डिमेलो ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं है।

0: करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.

0: श्रोताओं, 7:05 होने को हैं। अब से कुछ ही मिनटों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो लोन, लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य के सुधारों की दिशा तय करने के लिए जल्द बनेगी उच्च स्तरीय समिति। एनटीए की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कमोटा में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर

दिवसीय ब्लॉक मेला और जनजातीय खाद्य महोत्सव का आयोजन हुआ और राजधानी श्री विजयपुरम में माई भारत के तिरंगा रैली कार्यक्रम में युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का उत्साह और विकसित भारत के निर्माण का लिया संकल्प। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए जल्द ही बैंकिंग सुधार पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विचार कर भविष्य के सुधारों की दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में है और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए निचले स्तर पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि समिति के सिफारिशों से देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और परीक्षा की गोपनीयता व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षित कक्षों, एयर गैप्ड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने से जुड़े प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार तेजी से लागू करने को कहा। साथ ही एनटीए की सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि हाल की समस्याओं के बाद एनटीए ने परीक्षा प्रणाली में कई सुधार किए हैं। इसके तहत 50 से अधिक कर्मचारियों को एनटीए से हटाया गया है। नेतृत्व के 10 नए पेशेवर पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स और प्रश्न पत्र तैयार करने जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं, जिनमें डॉक्टर हिमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जनजातीय खाद्य महोत्सव और माई भारत। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 और 16 अगस्त को कमोटा के हॉकी मैदान में दो दिवसीय ब्लॉक मेला और जनजातीय खाद्य महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निकोबार के जिला उपायुक्त कमलेश कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी। कछाल, तरेसा और बंदर खाड़ी सहित दूर दराज के गाँवों और द्वीपों से स्वयं सहायता समूहों के 150 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने हस्तशिल्प, कढ़ाई और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण जनजातीय खाद्य महोत्सव रहा, जिसमें स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक खाद्य संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत माई भारत श्री विजयपुरम ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली आयोजित की। रैली को अंडमान लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ पीवीएन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय और अंडमान लॉ कॉलेज सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों

0: करीब 130 माई भारत स्वयंसेवकों और युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति की नारे लगाई। रैली का समापन ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल में हुआ, जहां युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत दक्षिण अंडमान उप शिक्षा कार्यालय के खेल अनुभाग ने आज श्री विजयपुरम के मोहनपुरा स्कूल सभागार में अंतर विद्यालय खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में श्री विजयपुरम के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। एनसीएस स्कूल के शौर्य गोयनका और देव सरकार ने पहला स्थान हासिल किया। महात्मा गांधी स्कूल के अविनाश सिंह और रमित मजुमदार दूसरे, जबकि कार्मल स्कूल के गालव साहा और पी मिथुन वेटेयार तीसरे स्थान पर रहे। विजेता टीमों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उद्योग निदेशालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद MSEFC में 2 संविदा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें लीगल कंसल्टेंट और HR कार्यालय एवं सचिवीय कार्य से संबंधित है। दोनों पद श्री विजयपुरम स्थित उद्योग निदेशालय में होंगे और नियुक्ति मार्च 2027 तक के लिए की जाएगी। लीगल कंसल्टेंट के लिए विधि स्नातक और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। HR पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर संबंधी कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप उच्च शिक्षा संस्थान के महाविद्यालय ने विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। अनंतिम योग्यता सूची 22 अगस्त को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम योग्यता सूची 25 अगस्त को जारी होगी और प्रवेश परामर्श 28 अगस्त को होगा। आवेदन पत्र कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने मुख्य भूमि के संस्थानों में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बी फार्मेसी CSABNEUT 2026 की रिक्त सीटों के लिए विशेष चरण में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की है। काउंसलिंग 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से श्री विजयपुरम के टैगोर कॉलेज के संगोष्ठी कक्ष में होगी। इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक सचिवालय के विकास 4 उच्च शिक्षा अनुभाग में जमा करने होंगे। उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दिन सभी मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। पात्रता और अन्य जानकारी CSAB की वेबसाइट csab.nic.in पर उपलब्ध है। अंडमान कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें BCOM, BBA, बैचलर ऑफ फार्मेसिंग आर्ट्स, BA अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अंग्रेजी तथा BSc मनोविज्ञान शामिल है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य के सुधारों की दिशा तय करने के लिए जल्द बनेगी उच्च स्तरीय समिति। NTA की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कमोटा में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 2 दिवसीय ब्लॉक मेला और जनजातीय खाद्य महोत्सव का आयोजन हुआ। और राजधानी श्री विजयपुरम में माई भारत के तिरंगा रैली कार्यक्रम में युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का उत्साह और विकसित भारत के निर्माण का लिया संकल्प। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है।

0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
7: जन पॉलिसी जन कैयन।
1: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
8: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
9: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है संध्या के 7:16। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा होगी या फिर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था आज का मौसम का मिजाज। अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जलियां नालंदा कल 18 अगस्त को सवेरे 9 बजे ननकौरी होते हुए कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा और 20 अगस्त को सवेरे 8 बजे कैमल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कैमल बे कल 18 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी रंगत परसों 19 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा करेगा और अगले दिन 20 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका कल 18 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से रवाना होकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। कल दिन के 11 बजे एमवी जॉली बॉय श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन के 11:30 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे ये जलयान स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की रवानगी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 बजे। शहीद द्वीप के लिए एमवी रंगत की यात्रा होगी श्री विजयपुरम से कल दोपहर बाद 2:30 बजे और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही शाम 4:30 बजे। स्वराज द्वीप के लिए एमवी बाराटान की रवानगी होगी कल शाम 5 बजे जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और अगले दिन 19 अगस्त को सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से चलकर ये जलयान शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध, फूल तथा अक्षत अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नाग पंचमी का संबंध प्राकृतिक और जीव जंतुओं के संरक्षण से भी है। सांप खेतों में चूहों और अन्य हानिकारक जीवों को नियंत्रित करके किसानों की फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें सांपों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस दिन कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग व्रत रखते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नाग पंचमी हमें प्रकृति के सभी जीवों का सम्मान करने और उनके संरक्षण का संदेश देती है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की धार्मिक आस्था और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है।

ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म के इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया सबक लिखा होता है। कभी यह धूप की तरह तपती है तो कभी छांव की तरह सुकून देती है। जिंदगी बहुत सरल है, लेकिन हम इसे पेचीदा बनाने पर तुले रहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं जैसी या हमें मिली है, बल्कि वैसी है जैसा हम इसे बनाते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की चाहत थी, पर जब जिंदगी को करीब से देखा तो लगा बस सुकून ही काफी है।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिंदगी छोटी है, बस मुस्कुरा कर जियो, ना जाने कब आखिरी बात होगी। किसी के बिना रहना दुनिया के सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, पर यही अनुभव हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। यह अकेलापन और खुद से मिलने के बीच का एक सफर है। किसी के बिना रहना मुश्किल इसीलिए नहीं होता कि वो साथ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारी रूह को उनकी मौजूदगी की आदत हो चुकी होती है। शुरुआत एक मजबूरी लगता है, पर धीरे धीरे यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत मुश्किल है खुद को समझा पाना जब दिल को आदत हो किसी के साथ की। अब दीवारों से बातें करना सीख लिया है, क्योंकि तन्हाई में आवाज सिर्फ अपनी ही आती है।

वो साथ थे तो वक्त का पता ना चला, अब वो नहीं तो वक्त कटती ही नहीं। जिंदगी की महफिल में लोग तो बहुत हैं, पर उनकी कमी को कोई भरता ही नहीं। किसी के बिना रहना भी एक हुनर है जो हमें खुद की अहमियत सिखा देता है। टूटते तो सब है किसी के जाने के बाद, पर जो संभल जाए वही जीना सिखा देता है। दोस्तों, प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी को पढ़ने का हुनर है। एक सच्चा हमदम वह नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में शरीक हो, बल्कि वह है जो आपके दुखों को आधा कर दे। जिंदगी अधूरी सी लगती है जब तक कोई ऐसा ना मिले जो आपकी कमियों को जानते हुए भी बेहतर तरीके से पेश आए। हमदम मिला तो लगा जैसे मंजिल मिल गई, सूखी थी जो जमीन उसमें कल

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनने पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 2-3-2-3-3-6 और 2-3-2-5-5-8। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच। कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
4: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।

0: अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत, वादा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज स्टाइल फिल्म के गाने से।

आवाजें उदित नारायण और सुनिधि चौहान की। गीतकार हैं अब्बास और संगीतकार हैं संजीव दर्शन।

0: ये आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। फैज़ अनवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था डब्बू मलिक ने, और फिल्म का नाम था मैंने दिल तुझको दिया।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
4: Nexa.
5: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: डू यू प्ले फॉर द रश और डू यू प्ले इट स्मूथ? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.

कुछ दिल ने कहा, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं निखिल विनय।

शुदा हूँ मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, और हम आपको बता दें ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। सुनते हैं रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले SC ST और OBC उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। और अब आइए सुनते हैं गौरव गान।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने

0: का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय

0: अध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। घर घर।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना

0: साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178 run lead after restricting Sri Lanka.

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें

0: आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-2371-7171-7171-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता ऐसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर। उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा। उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं। हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं FBO को उस तरीके

0: तरीके से क्लेम्स को बदलने का।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: जी बताएं, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है, जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
1: जी कविता मैम बताएं, क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका?
3: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है। अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए, उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं। से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं। अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं। वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है, उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके।
1: जी बिल्कुल। और अनुपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
4: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने इसने करीब 500 से ज़्यादा नोटिसेज इशू किए हैं।
1: बहुत बड़ी कार्रवाई।
4: और ये जो नोटिसेज हैं, विशेष रूप से जहाँ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं, जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे।
4: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे, यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी। तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया, जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में, वह है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें जप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है, वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे, जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्षों की है।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी नमस्कार। मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन के हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसा वहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप इस पर बता दें।
1: जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: जी बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है

0: खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
1: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है
0: जी जी
1: करके। हाँ
0: जी जी जी FSSAI
1: जी,
0: का।
1: हाँ जी। देखिए, हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है।
0: जी
1: वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, FBO, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है। हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है। सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली 2 बार जमा करना है। फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम 4 बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का। उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधरे करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है। मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे व्हाट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
0: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है।
0: जी,
2: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट एड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
0: बहुत बड़ी सुविधा,
2: उसका पेमेंट कर सकते हैं, और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए, सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
0: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी शगन जी, शगन
0: हाँ,
1: जी
0: मैं
1: सवाल
0: श्रीपाद
1: पूछिए।
0: जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से।
1: जी
0: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है,
1: जी
0: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके इसके समाधान का क्या मतलब, तरीका क्या है मतलब।
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
2: हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है
1: जी
2: और
1: बिल्कुल,
2: ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही वही उनका सवाल है ना।
1: जी
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: जी, मतलब ये नहीं, प्रोडक्ट मतलब शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो सेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली। अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट प्रीपैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है।
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
3: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनके यदि किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना।
1: जी
3: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है, यह टोल फ्री है,
1: जी
3: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: जी
3: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800191585, 8800191915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि
1: जी
3: वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले 1 वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है।
1: जी और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है, नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी, आपसे सवाल ये रहेगा।
2: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेसेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन

0: चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है, उसमें चीनी ज्यादा होता है. इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है. सेम तरीके से अनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके. फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये अनलाग है और पनीर है. इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है. अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग. फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को.
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं। ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है, ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है।
1: जी
2: इसमें बेसिकली तीन निशान हैं। एक है BIS का लोगो, जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो
1: जी
2: शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है। दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है। तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के
1: जी
2: ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा।
1: जी
2: तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे,
1: जी बिल्कुल।
2: वो BIS का हैलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है.
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका.
1: जी, सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है.
1: जी अनुपम जी,
2: जी
1: पूछिए।
2: आप, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी. आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आप 1915 पर फोन करके कर सकते हैं. आपको उसे राइटिंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है. पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए. यदि कंपनी में भी आप फ़ोन नंबर है, उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं, वहाँ कीजिए. वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ
1: जी
2: तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से
1: से
2: पहले
1: पहले
2: की एक व्यवस्था है,
1: जी
2: आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में, हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है,
1: जी
0: उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं. और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा पॉस्कॉफ पोर्टल भी है,
1: जी
0: उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड. अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल अफेंस है. इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और पोस्टकॉस्ट पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं. अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप. हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर. अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे.
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है. उसके
1: जी
2: साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी

0: भी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमआरपी, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है,
1: जी
0: प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वज़न उसका कितना है, डेट ऑफ मैनुफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है,
1: जी
0: नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने
1: जी
0: ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है, लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है,
1: जी कविता
2: मतलब
1: जी,
2: ये सारा
1: जी
2: कॉमन मैन को समझ आना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे
1: जी।
2: अप्रोच
1: कविता
2: करना
1: जी,
2: वो भी जानने
1: समय
2: चाहिए।
1: समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

मिनी में 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम संदेश आते हैं।

वक्त के ठहराव और रूह के सफ़र की खूबसूरती को महसूस करने का सुनहरा समय होता है रात का गहरा सन्नाटा। इस वक्त में अपने विचारों के साथ अकेला इंसान खुद को बेहतर समझ पाता है और यह रात का सन्नाटा जैसे दिल और दिमाग को शांत करता है। वक्त की रेत गिरती है बेसबब, वक्त की रेत गिरती है बेसबब, हर पल में छुपा है जिंदगी का सबब। जो ठहरे वो पाए हकीकत का दर, जो ठहरे वो पाए हकीकत का दर, बस वहीं से रूबरू होता है रूह का सफ़र। नमस्कार, संदेश से आते हैं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी प्रस्तोता फातिमा और अब पढ़ने जा रही हूं कार्यक्रम का

पहला संदेश जो आया है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का। बरसात फिल्म के गीत की फरमाइश करते हुए बहुत ही खूबसूरत गीत और रात के इस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई पहुंचेगी आप सबके दिलों में। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। फिल्म बरसात का गीत, झारखंड के दोस्त।

एक और खूबसूरत गीत सुनवाने जा रहे हैं गारा चरमा की दोस्त कनिषा की फरमाइश पर। ये गीत है ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये प्यारा सा गीत आप सबके दिल को सुकून पहुंचाने वाली है, तो सुनते हैं कनिषा की फरमाइश।

अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में नया गांव से सुनीता और परिवार की। इन्होंने फरमाइश की है दम लगा के हैसा फिल्म के गाने की। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज़ ज़रा सा।

रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। दिल एक मंदिर फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है भातु बस्ती से अंजलीना ने।

अगली फरमाइश हम पढ़ रहे हैं शकीला और अजीज का, जो हमसे जुड़ रहे हैं रंगत से। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा। फिल्म है अपना देश।

0: आज प्यार प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। फिल्म उलझन का ये खूबसूरत सा गीत अनीशा और मनीषा की ख्वाहिश पर, जो हमसे जुड़ रहे हैं बम्बू फ्लैट से।
1: अरे आज

0: अब कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि ठंडी हवा, आसमान में टिमटिमाते तारे, चांदनी रात की सौम्यता और मधुरता और चारों ओर फैली शांति आप सबके दिल को सुकून देती रहे। शुभ रात्रि।
1: संदेशे आते हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। और अब चलते चलते मौसम पर एक नज़र। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 और 58 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

माइक वन, द टाइम बाय द स्टूडियो क्लॉक इज 5 आवर्स 6 मिनट्स 49, 50, 51, 52, 53. माइक टू, द टाइम इज 5 आवर्स 7 मिनट्स एंड 2, 3, 4, 5. थैंक यू. माइक टू, द टाइम इज 5 आवर्स 7 मिनट्स 50.

माइक वन, द टाइम इज 5:07, 48, 49, 50, 51. माइक टू, 5 hours, 7 minutes, 9:60.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026, सुबह के समय 5:28 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: नेतृत्व क्षमता का अर्थ दूसरों को निर्देश देना नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाना और स्वयं उदाहरण बनना है। एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और आत्मविश्वासी रहता है, अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है। नेतृत्व में जिम्मेदारी, ईमानदारी और सहयोग की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति सबकी बात सुनता है, सही निर्णय लेता है और सबको साथ लेकर चलता है, वही सफल नेता बनता है। इसलिए हमें अपने अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए, ताकि हम न केवल स्वयं आगे बढ़ें, बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह दिखा सकें। सच्चा नेता आदेश नहीं देता, वह प्रेरणा देता है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।